0: लोकलिंगीत,
1: साहित्य रोशन क्रास्तानी, लॉयड रेगो, संगीत विनिल वेगस, गैलीले जमनसाथ प्रज्योत डेसा, गीत उड़ी उड़ी।

लिंगित, साहित्य रोशन क्रास्तानी, लॉयड रेगो, संगीत विनिल वेगस, गैलेले जावना साथ प्रज्योत डेसा, गीत उड़ी उड़ी।

0: लोकलिंगीत
1: साहित्य रोशन क्रास्तानी लॉयड रेगो संगीत विनिल वेगस गैलीले जमनासाथ प्रज्योत डेसा गीत उड़ी उड़ी